उत्तरा कहकर के स्वर में ये मराठी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं संत मीराबाई की ये हिंदी भक्ति रचना अनुपमा रॉय के स्वर में।

अनुपमा रॉय के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में संत गुरु नानक जी की ये भक्ति रचना।

लता मंगेशकर के स्वर में संत गुरु नानक जी की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग जौनपुरी पर ख्याल. कलाकार हैं रूना दे. आपके साथ तबले पर हैं तुषार कांति दत्ता और हारमोनियम पर हैं कमलाक्षा मुखोपाध्याय. तो लीजिए प्रस्तुत है राग जौनपुरी पर ख्याल. कलाकार हैं रूना दे.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning, we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to Khayal in the Rag Jaunpuri. Our artist is Runa De. Accompanying our artist on the tabla is Tushar Kanti Datta and on the harmonium is Komalakho Mukhopadhyay. Listen now to Khayal in the Rag Jaunpuri, our artist Runa De.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जौनपुरी पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थी रूना दे। आपके साथ तबले पर थे तुषार कांति दत्ता और हारमोनियम पर थे कमलाक्षा मुखोपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग सबेरी तोड़ी पर सितार वादन। कलाकार हैं प्रणव मंडल। आपके साथ तबले पर हैं आलोक मुखोपाध्याय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग सबेरी तोड़ी पर सितार वादन। कलाकार हैं प्रणव मंडल।
1: You were listening to Khayal in the Raag Jaunpuri. Our artist was Runa De. Accompanying our artist on the tabla was Tushar Kanti Datta and on the harmonium was Komalakho Mukhopadhyay. This is Raagam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a sitar recital. Listen now to a sitar recital in the Raag Saveri Todi. Our artist is Pranob Mondol. Accompanying our artist on the tabla is Alok Mukhopadhyay. Listen now to the sitar in the rag Saveri Todi. Our artist Pranob Mondol.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग सवेरी तोड़ी पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे प्रणव मंडल, आपके साथ तबले पर थे आलोक मुखोपाध्याय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Saveri Todi. Our artist was Pranob Mondol. Accompanying our artist on the tabla was Alok Mukhopadhyay. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो चैनल रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। आप सभी का कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। सुनते हैं वायलिन वादन। वायलिन वादन के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं पंडित एमएस गोपाल कृष्णन के वायलिन वादन से। आपने प्रस्तुत किया है राग किरवाणी। आलाप जोड़ विलंबित अद्रुतग तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित लाल जी गोखले। सुनते हैं पंडित एमएस गोपाल कृष्णन का वायलिन वादन राग किरवाणी।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे पंडित एमएस गोपाल कृष्णन का वायोलिन वादन राग था किरवाणी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित लालजी गोगे। श्रोताओं, वायोलिन वादन के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पंडित वीरजी जोग का वायोलिन वादन राग छायानट। विलंबित गत झुमरा ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं विनायक पाठक। सुनते हैं पंडित वीरजी जोग का वायोलिन वादन राग छायानट।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे पंडित जी जोग का वायोलिन वादन राग था छायानट। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे विनायक पाठक। आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी रागम। 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है उस्ताद रफीउद्दीन साबरी से विजय शंकर मिश्र की भेंट वार्ता.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present for you an interview with Ustad Rafiuddin Sabri. Interviewing him is Vijay Shankar Mishra.

0: नमस्कार, मैं विजय शंकर मिश्र आप सभी सुधी संगीत श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। आज हमारे साथ देश के सुप्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद रफीउद्दीन साबरी स्टूडियो में उपस्थित हैं। साथ में हारमोनियम पर हैं श्री सज्जाद अहमद और तानपुरे पर श्री सपन विश्वास। उस्ताद रफीउद्दीन साबरी जी, मैं आपके साथियों के साथ स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। आदाब।
1: आदाब से विजय शंकर मिश्रा जी। आदाब से
0: रफीउद्दीन जी, शुरू में क्यों ना थोड़ा सा तबला वादन हो जाए, अपनी पसंद के किसी बोल से आप शुरू करें इस कार्यक्रम का।
1: जी, मैं आप कहते हैं तो मैं कुछ थोड़ा सा बजाता हूँ। सब बुजुर्गों का ही है।

0: क्या बात है,
1: ये
0: क्या बात?
1: छोटा सा फायदा, वक्त के लिहाज से थोड़ा ही थोड़ा मैं बजा रहा हूँ
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: ये मैंने एक छोटी सी चीज आपके सामने पेश करी जैसा कि आपने फरमाया।
0: अब इस वादन के बाद आप हमें ये बताने का कष्ट करें कि आपके संगीत की शुरुआत कहाँ से हुई, अपने परिवार, अपनी परंपरा, उसके विषय में थोड़ा सा बताएं।
1: जी बहुत अच्छा है। एक्चुअल मैं ये तबले की जो तालीम मेरी हुई है
0: जी,
1: उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब होते थे और रिश्ते में नाना भी लगते थे, सब उनको नाना अब्बा के ही नाम से पुकारते थे। वो कुछ हालात ऐसे बने कि वो हमारे घर तशरीफ ले आए
0: जी,
1: और वो वहीं रहने लगे। तो मेरे वालदा और मेरी वालिद ने कहा भाई आप किसी चीज की टेंशन ना लें, आप यहाँ रहें, ये छोटी सी जगह बनी हुई है, कोठरी हुआ करती थी हमारे उधर, वहां रहें और गाना सभी के लिए बनता है माशाल्लाह, आप हमारे लिए बड़ी उसकी बात रहेंगे कि आप यहीं पे अपना रहें और किसी चीज की फिक्र ना करें। खैर वो रहने लगे तो फिर एक दिन वो बोलने लगे मेरे वालदा से, मेरे वालिद से कि भाई ऐसा है कि मैं यहाँ रहूंगा जरूर मगर एक शर्त पर रहूंगा
0: जी।
1: कहने लगे जी क्या चीज है? कि भाई मैं रहूंगा जब मैं रफी को तबला बताना चाहता हूँ। तो वालिद साहब बोला जी कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है मगर फिर भी आप कहते हैं तो माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करें और उसको सीख लें। वो वहां रहने लगे, मेरे लिए मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो वहां रहे और उन्होंने मुझे तबला शुरू करवाया। तो उन्होंने ये शुरुआत करवाई, अभी जो कायदा मैंने बजाया ये उन्होंने ही मुझे बतलाया
0: जी। उसके बाद?
1: उसके बाद में ये है कि अब उन्होंने मुझे काफी चीजें ऐसी बतलाई जो मैं आपकी दुआ से जहां भी मैंने बजाया लोगों ने सराहा। दूसरी बात यह है कि उनके बाद में बल्कि उनकी जिंदगी में मेरे ताया उस्ताद नजीर अहमद खान साहब, उन्होंने मुझे तबला शुरू कराया। उनसे पूछा भी, बच्चा तो आपका शागिर्द है, मेरा भतीजा भी है, मगर मैं फिर भी आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ कि वो मैं इसको बतलाऊं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपका खून है, आपका बच्चा है, आपके भाई का बच्चा है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आप बतलाए, मुझे कोई इसमें ऐतराज नहीं। तो उसके बाद में मेरे जो ताया उस्ताद नजीर अहमद खान साहब, उन्होंने मुझे तबला शुरू कराया और जो भी उन्होंने मुझे सबक बतलाया सिखाया मैं उस पर अमल कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वो सही तरीके से मैं उसको पेश कर सकूँ, ये मेरी कोशिश है।
0: आप संगीत के परिवार से हैं, अपने वालिद के विषय में थोड़ा बताएं, उस परंपरा के विषय में थोड़ा बताएं।
1: जी मेरे वालिद उस्ताद सगीर अहमद साबरी उनका नाम था, बहुत ही अच्छे लोग थे वो, मैं उनकी क्या सब उन्हीं की मेहनत और भाग दौड़ सब, उन्होंने क्या क्या तकलीफें हमारे लिए उठाई सब उन्हीं की ये दुआएं हैं। मैं क्या इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करूं कि उन्हीं की बदौलत शायद मैं तबला सीख गया हूं। और मेरे वालिद गाना गाते थे, बहुत ज्यादा नहीं मगर कम गाना गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे, रेडियो से भी गाते थे, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में वो जॉब किया करते थे, कर्नल गुप्ते जी हुआ करते थे उस दौर के अंदर, तो वो उसमें वहां पे उन्होंने उसको संभाला हुआ था। ये मेरे वालिद हैं जो मेरे उस्ताद के सबसे छोटे भाई हैं, उस्ताद नजीर बाबा से सबसे छोटे हैं वो। खैर वो अब तो इस दुनिया में नहीं है, 2004 में उनका इंतकाल हो गया था। उनकी कोशिश ये रही, हालांकि मैं बचपन में बड़ा ज्यादा तकड़ा नहीं था जिस्म के अंदर और दुबला पतला था, मेरी

0: भी जो है वो बुआ जी मेरी वो कहा करती थी कि भाई इसको मैंने सुना तो तबला सिखा रहे हो, इसका जिसम ऐसा तो है नहीं, मैं चाहती हूँ इसको सितार सिखाओ, तबला तो जरा ताकत का काम है।
1: जी जी।
0: तो मगर फिर मैं यही कहूंगा कि कुदरत की तरफ से जो रास्ते मेरे लिए बनने थे तो वो बने, कि मैंने तबला सीखा और मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको बजाने के लिए।
1: ऐसा माना जाता है कि पुराने समय के जो उस्ताद हुआ करते थे बहुत कड़ाई से सिखाते थे, बहुत कठिन रियाज कराते थे, आपके उस्तादों ने आपसे कैसे काम लिया, कैसे रियाज कराए, कैसे पेश आए?
0: बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, उस्तादों ने ये, जब तक के उस्तादों का ये रवैया नहीं होता है तो शायद शागिर्द ना सीख भी नहीं पाता
1: जी।
0: हालांकि उन्होंने नजरों के अंदर ही मुझे समझा दिया तो मैं समझ गया उस चीज को कि भाई हम जिस वक्त यहाँ पर आ गए हैं तुम हमसे सीखते हो तो तुम हमें उस वक्त यहाँ मिलो, हमें तबला बजाते हुए मिलो, उस पर रियाज करो। और बस उनके इशारे से मैं इस चीज को समझ गया। हालांकि एक दो दफा जैसे खेल में ध्यान भी होता था कभी कभी तो पिटाई भी हुई, और उन्होंने एक मुझे याद है कि मेरे उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब ने एक मेरे थप्पड़ जरूर लगाया था, शायद उसी थप्पड़ की बरकत है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोगों के सामने बातचीत कर रहा हूँ। मैं तो अपने लिए खुश नसीबी समझता हूँ उस चीज को।
1: कितनी देर रियाज करते थे आप बचपन?
0: मैं बचपन में मेरा यह था कि मैं 2 घंटे तो मैं रियाज करता था, उसके अलावा जैसे सुबह स्कूल जाने से पहले थोड़ी देर तबला बजाया, स्कूल से आने के बाद मैं बजा लिया, शाम को उस्ताद साहब आया करते थे तो उनके सामने रियाज कर लिया, उन्होंने कहा कि भाई इसको ऐसे बजाओ, इसको ऐसे बजाओ। कुछ दिनों तो मैं इसी तरीके से रियाज करता रहा। उसके बाद में जो मेरे भाई हैं, एक इकबाल अहमद उनका नाम है, वो भी तबला बजाते थे तो वो काम से आया करते थे रात में, तो उनके साथ भी मैंने उनको कह रखा था कि आप मुझे उठा दिया करें तो हम रियाज करा करेंगे। तो वो ये है कि रात को 2-3 बजे रियाज करने के लिए बैठ गए, सुबह 4 बजे तक वो भी बजाते थे तबला, मैं भी रियाज करता था। मसला मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं तकरीबन रियाज ही करता रहा, मैं दिन में, दोपहर में, शाम में, रात में, जब भी मुझे समय मिला। तो फिर जब मैंने इस बात को समझ लिया कि मेरे पेरेंट्स, मेरी वालिद और मेरी वालदा ये चाहते हैं कि भाई मैं तबला सीखूं, तो मैं उस चीज को बहुत ध्यान से मैंने गौर करा और मैंने कहा भाई मुझे इसको फिर मेहनत करना चाहिए, मुझे अपना सारा ध्यान इसमें लगाना चाहिए। उन लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं थी मेरे लिए
1: जी, जी।
0: कि मैं थक के उठ रहा हूं या मेहनत करके उठ रहा हूं, तो वो मेरे लिए बराबर ध्यान है। उनको लस्सी बना के ला रहे हैं या गर्म दूध मुझे पिला रहे हैं रात के अंदर, बेहतरीन खाना, असली घी, उस दौर में असली घी आज भी चलता है, इसलिए कि भाई ये जब रियाज मेहनत कर रहा है तो जरा इसके अंदर ताकत रहे, इसको ये भी महसूस ना हो, क्योंकि तबला एक बहुत ही ज्यादा ताकत का काम है। ये इस तरीके से मतलब सिलसिला जो है चल रहा है।
1: इस कार्यक्रम का नाम है घरानों की श्रृंखला। संगीत या हम कहें तबले में घरानों को आप कितना महत्व देते हैं, कितना जरूरी मानते हैं?
0: जी एक्चुअल में क्या चीज है, जो घराने बुजुर्गों ने बना दिए हैं वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। कोई घराना अगर कायम है तो उसकी कोई विशेषता है, उसकी कोई खासियत है। सिलसिलेवार सीखने के लिए घराने में, किसी में भी घराने में आप जाएं जहां आपको पसंद है वहां सिलसिलेवार आप सीखेंगे, तो आप जब सिलसिलेवार वहां से तबला सीखेंगे तो आप तबला प्लेयर बन सकते हैं, वो जरूरी है। उसके अंदर जो एक परंपरा चली आ रही है उस्तादी शागिर्दी की, गुरु शिष्य परंपरा, आप उस तरीके से उस चीज को लेके चलेंगे तो कामयाबी आपको मिलेगी।
1: इससे संगीत का कितना भला हुआ घरानों से?
0: जी घरानों से संगीत का भला ही हो रहा है, नुकसान तो कहाँ हो सकता है मेरे? नुकसान मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि जो घराने जो कायम है और जो लोग गा बजा रहे हैं, जो किसी मंजिलों पे हैं, तो कोई नुकसान नहीं है उसमें, बल्कि सीखने वालों के लिए घरानों का महत्व ये है कि घराने जरूरी है। अभी जितने भी आप कलाकार देख रहे हैं हिंदुस्तान में गा बजा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, वो सब घरानों की देन है। यूं तो स्कूल कॉलेजेस भी खुले में, हम किसी को बुरा नहीं कहते, वहाँ भी बच्चे सीख रहे हैं, मगर अगर एक फनकार बनना है, एक आर्टिस्ट बनना है, तो किसी घराने को अपनाना होगा, किसी उस्ताद को अपनाना होगा, उनसे सीना बसीना तालीम हासिल करनी होगी, उस्ताद के जो जरूरी बातें हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। वो वाला हिसाब होता है कि घोड़ा घास से जारी करेगा तो खाएगा क्या। हम अगर उस्ताद साहब से सीखते हैं तो उनकी जो जरूरतें हैं हम उनकी खिदमत कैसे कर सकते हैं, वो भी जरूरी है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: असला क्या चीज है कि हम स्कूलों में भी जाते हैं, वहां भी तो पैसा ही खर्च करते हैं सीखने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी चीज हो। तो जब हम एक उस्ताद से सीख रहे हैं तो क्यों ना हम उनकी अच्छी तरीके से सेवा करें, उनकी खिदमत करें, जिससे हम एक इल्म हासिल कर सकें। इल्म हासिल करने से क्या चीज होगा कि इल्म हमें आ जाएगा, हम गाय बजा सकते हैं उसको, और एक बड़ी बात यह कि वो इल्म हमारे पास आ गया तो हमारी नस्लों के काम आएगा।
1: क्या बात।
0: तो उस जो हम उनकी खिदमत कर रहे हैं, जो पैसा हम वहां खर्च कर रहे हैं, उसके कोई मायने नहीं है। हम कितना भी उनको पैसा दें उसके कोई मायने नहीं है। वो बाद में जब हम गाय बजाएंगे, कमाएंगे पैसे, तो शायद कितना पैसा कमाएंगे।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: उसका यह है, तो घराने बहुत जरूरी है।
1: आप पूरी दुनिया में बजा रहे हैं, आपके तबले का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ मैं, आपको तो लगातार सुनता रहता हूँ।
0: बड़ापन की बात है।
1: आपके वादन में मुझे कई घरानों की झलक दिखाई देती है
0: जी,
1: कई घराने की बोल आप बजाते हैं। आप अपने आप को किस घराने का मानते हैं?
0: एक्चुअल में क्या चीज है कि मैं तो सभी घरानों को मानता हूँ साहब, जो दिल्ली से चले हैं, जो मैंने बुजुर्गों से सुना है, मैं सभी घरानों को मानता हूँ। मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे सिखाया है उन्होंने यही कह के सिखाया कि भाई हम सभी घरानों को मानते हैं, सभी घरानों का बाज बजाते हैं, सभी की निशानियां हमारे पास हैं, और सभी घरानों को मैं मानता हूँ, बजाता हूँ जो भी है।
1: तो इस समय आप मुझे किस घराने की क्या चीज सुना रहे हैं?
0: अभी मैंने

0: कायदा छोटा सा बजाया था, एक कायदा और मैं बजाता हूँ जो मैं मेरे घराने में बजाया है।
1: आपके घराने में मतलब दिल्ली घराने में?
0: जी दिल्ली घराना जो मेरा घराना है वो एक्चुअल में वो है जलवाना घराना।
1: ठीक है।
0: जो मेरे बुजुर्ग जहाँ के हुए हैं, गोंदर जलवाना एक जगह है जिला करनाल के अंदर, तो मेरे बुजुर्ग वहाँ के हुए हैं। तो मेरे दादा जो थे, वैसे तो मेरे जो परदादा थे वो गुलाम नबी खान साहब उनका नाम था, सरंगी बजाते थे। मेरे दादा वो भी सरंगी बजाते थे, मगर उनके चचेरे भाई थे हमारे परदादा उस्ताद करम बख्श खान साहब, पखाव जी थे, वो तबला भी बजाते थे। और वो महाराजा सियाजी महाराज गायकवाड़, महाराजा ऑफ बड़ौदा,
1: उनका करम बख्श जलवाने वाले,
0: जलवाने वाले
1: बहुत बड़ा नाम है।
0: जी बिल्कुल,
1: बहुत बड़ा नाम है।
0: तो वो उनके यहाँ मुलाजिम थे उस दौर के अंदर, उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब किरानी के, वो भी वहाँ मुलाजिम रहे कुछ दिनों के लिए। तो उसके बाद में वो चले गए थे। तो वो सिलसिला जो था वहां से उस्ताद अब्बू खान साहब जो मेरे दादा लगते हैं, यानी कि करम बख्श खान साहब के एक और भाई थे, चचेरे भाई उस्ताद गुलाम अहमद खान, उनके बेटे गुलाम अब्बू खान साहब थे, उन्होंने उनसे सीखा करम बख्श खान साहब से। वो इल्म उनके पास में आया और अब्बू खान साहब से जब ये इल्म चला तो उस्ताद नजीर अहमद खान साहब जो मेरे बड़े ताया थे
1: जी,
0: उनके पास आया और उस्ताद नजीर अहमद खान साहब के बाद मेरे पास पहुंचाई। तो ये वो अब दिल्ली में रहे, वो दिल्ली भी बजाते थे, वो अजरड़ भी बजाते थे, और पूर्व यानी कि सभी घरानों की, उनका कहना यह है कि मैंने जो बोले कि हमारे पास सभी घरानों की निशानियां हैं और हम सभी घरानों को मानते हैं और सभी बुजुर्गों का अदब और एहतराम हमारे दिल में है, ये सिलसिला इसी तरीके से चला आ रहा है
1: जी।
0: तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि दिल्ली में रहे वो सब लोग, जैसा कि मेरे उस्ताद साहब उस्ताद नजीर अहमद खान साहब मेरे जो ताया, उन्होंने मुझे बतलाया, उन्होंने हमने बाकायदा उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने रिकॉर्डिंग में ये सब बोला है। तो दिल्ली में रहे, दिल्ली का सबक भी बजाते थे उस्ताद अब्बू खान साहब और वो,
1: बिल्कुल।
0: तो वहीं से वो उस्ताद नजीर अहमद खान साहब के पास पहुंचा और उनके जरिए से मेरे पास आया। ज्यादातर हमारा जो जोर रहा दिल्ली ही बाज पे रहा, हमारे बुजुर्गों ने दिल्ली बाज ज्यादा बजाया और फिर जो उन्होंने मुझे बताया मैं भी वही बजा रहा हूँ। मेरे
2: दिल्ली का पेशकार बड़ा मशहूर है
0: जी जी।
2: तो थोड़ा सा पेशकार की झलक देखते हुए फिर किसी कायदे पे

0: कायदा मैंने आपके सामने थोड़ा सा पेश किया
1: जी। अच्छा, हम जब घरानों की चर्चा करते हैं तो एक बात उठती है कि हर घराने की कुछ अलग विशेषता होती है, इसलिए घराना जिंदा है
0: जी।
1: तो दिल्ली घराने की क्या विशेषता है?
0: जी, दिल्ली घराने की जो विशेषता खासियत है वो ये दो उंगलियों से ही बजाया जाता है
1: जी।
0: उसमें तीसरी उंगली को ठीक नहीं समझा जाता बजाने के लिए। जैसे कि तेरते का कायदा, मैंने ये भी दिल्ली से बिलोंग करता है कायदा, और उससे पहले भी मैंने एक कायदा बजाया, उसमें दो उंगलियों का बाज है और वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है ठा दुगुन बजाने के लिए, और इसीलिए ये मुश्किल भी कहलाता है दिल्ली बाज जो है।
1: और तबले के एक किनारे पर ज्यादातर बजता है, इसीलिए इसको किनार का बाज भी कहते हैं।
0: किनार जब जाहिर बज रही है तो किनार का बाज भी कहेंगे, मैंने बजता है तो ये जरूरी है उसके अंदर।
1: दिल्ली से जब तबला चला तो दिल्ली के पास ही अजराड़ा पहुंचा
0: जी।
1: आप अजराड़ा भी बजाते हैं?
0: जी आप बस बजाना क्या है, जो भी मैंने सीखा है मैं उसको कोशिश करता हूँ। जो घराने तो अपनी जगह बहुत, इसमें कोई शक नहीं है, बराबर है। अजराड़ा घराना एक बहुत खूबसूरत और बड़ा अच्छा घराना है, और वहाँ जो भी बुजुर्ग हुए हैं।
1: वो घराना आपको क्यों अच्छा लगता है, क्या उसकी विशेषता है, दिल्ली से क्या अलग है उसमें?
0: भाई इसमें चीज थोड़ा सा है कि आड़ बजाई जाती है उसके अंदर, ये उनकी एक विशेषता है। मतलब बराबर लेके भी कायदे बजाए जाते हैं, उसमें आड़ के भी कायदे बजाए जाते हैं, तो ये इसी वजह से उसकी
1: आड़ के कायदे ज्यादा बजते हैं।
0: आड़ के कायदे उसमें ज्यादा बजाए जाते हैं, तो ये इसलिए वो अजराड़ा घराना कायम किया बुजुर्गों।
1: इस समय आप मुझे आड़ का कोई कायदा सुनाएंगे?
0: जी मैं सुनाता हूँ, देखिए कोशिश करता हूँ, बड़ा मुश्किल कायदा है जी। अच्छा जी, जरा सा लय चेंज करनी पड़ेगी।

0: ये मैंने क्या बात है जो उस्ताद हबीबुद्दीन खान साहब ने भी बजाया इस कायदे को, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने मैंने पेश किया है।
1: जब घरानों की चर्चा चलती है तो हम जैसे लोगों के मन में एक सवाल आता है, ये घराने कैसे बनते हैं? हर घराने के कुछ विशेष खास बोल होते हैं या बोल लगभग वही होते हैं, उनको बजाने का ढंग अलग होता है, बजाने की टेक्निक अलग होती है?
0: घरानों का मसला यह है कि बोल तो सबके सेम ही हैं
1: जी।
0: घरानों के अंदर बोल तो सभी जो दिल्ली में बज रहे हैं, अजाड़े में भी वही बज रहे हैं, और फरखाबाद हो गया, बनारस है, पंजाब, जो भी घराने हैं सब में बोल वही बज रहे हैं। बस उनकी थोड़ी सी टेक्निक है, उन्होंने जिस तरह से भी फिंगरिंग उसके अंदर अपने इस्तेमाल करी जिससे वो आसानी से उसको बजा सकें, उसमें एक बाबत पैदा कर सकें, खूबसूरती उसमें कायम रख सकें, तो ये थोड़ा टेक्निक का उसके अंदर फर्क होता है। मैंने
1: आप जैसे दिल्ली भी बजाते हैं, अजराड़ा भी बजाते हैं, पूरब भी बजाते हैं
0: जी,
1: तो आप उस टेक्निक को अपनाते हैं, अलग अलग टेक्निक जो है, जैसे पूरब जब बजाएंगे तो
0: जी हाँ, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा उसके अंदर वो जिस तरीके से वो बोल बने हुए हैं, जिस तरीके से उनका कायदा उसी तरीके से बजाना पड़ेगा।
1: और जैसे अगर दिल्ली का कोई कायदा लेते हैं
0: जी
1: और उसको कहा जाए कि अजराड़ा के स्टाइल में बजाना है, तो उसकी टेक्निक को आप कैसे करेंगे?
0: बस ये है कि उसको कोशिश की जाएगी कि अजराड़े के स्टाइल में बजाने में बस जो उसको आड़ में कर दिया जाएगा
1: जी,
0: रहेगा वो दिल्ली, मगर जो उसका आड़ का जो तरीका है वहाँ से उसको
1: फ्लेवर आ जाएगा, अजराड़े का फ्लेवर
0: आ जाएगा उसके अंदर, ये थोड़ा सा हो सकता है।
1: अच्छा, दूसरी बात ये है कि अलग अलग घराने की जो वादन शैली है उसको मेंटेन करने के लिए क्या तबले की बनावट, उसके आकार प्रकार, उसके मुंह का छोटा बड़ा होना, उसकी हाइट का कम ज्यादा होना, इस पे भी डिपेंड करता है? जैसे पूरब के तबले को कहा जाता है कि खुला तबला बजता है
0: जी,
1: खुला बाज है, तो खुला बाज के लिए क्या बड़े मुंह का तबला लेना जरूरी है या थोड़ा और ऊंची हाइट का तबला लेना जरूरी है?
0: में क्या चीज है कि ये तो मैं समझता हूँ कि तबला छोटे मुंह का हो या बड़े मुंह का हो, हाथ की रवानगी जिस देखी जाएगी उसके अंदर जिसमें हम आसानी से बजा सकें, ये सबसे पहली एक चीज आती है। थोड़ा सा साइज का भी होता है कि हर फनकार का ये भी होता है कि मैं किस मेरी साइज का बैठक क्या है उसी हिसाब से मेरा

0: क्या साज होना चाहिए? मुझे बड़ी मुहार में बजाने में आसानी होती है या छोटी मुहार के तबले बजाने में आसानी होती है?
1: नहीं, जैसे हिसाब से भी वो रखते हैं। जैसे बड़े मुंह का तबला हम लेते हैं
0: जी,
1: और उस पे हम दो उंगली का बाज बजाना चाहें, किनार का बाज बजाना चाहें
0: जी,
1: तो उसमें वो खूबसूरती नहीं आ पाती जो छोटे मुंह के तबले में आती है।
0: एक्चुअली में
1: या छोटे मुंह के तबले में हम जो खुलापन एक पैदा करना चाहते हैं, जो एक लाउडनेस लाना चाहते हैं, वो छोटे मुंह के तबले में नहीं आ पाते। मेरा ऐसा सोचना
0: जी। एक्चुअली में क्या चीज है, बड़ा तबला अगर बजेगा तो वो मुश्किल हो जाता है
1: जी।
0: बज तो जाएगा, उस पर कोई भी चीज बजाएंगे एक लिमिटेड बजेगी वो, तो बड़े मुंह का तबले में अगर हम बजाएंगे तो वो बोल उसमें जरा थोड़े मुश्किल हो जाते हैं बजाने के लिए। छोटे मुंह के तबले के अंदर ये कि थोड़ा आसानी से बजा लेते हैं। आजकल का ट्रेंड भी ये है कि ज्यादातर देखा जाए तो सब छोटे मुंह 5.5 और मैक्सिमम 6.25 का तबला सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो 7 इंच का तबला और 6.5 और ये वो इस कदम के तबले बजे हैं, जो कि वो एक दौर था उसमें बजाया बुजुर्गों ने, तो मगर अब दौर के लिहाज से ये तबले चल रहे हैं। तो ये कहने का मकसद है।
1: अब इस समय आप मुझे पूरब का कुछ सुनाएंगे?
0: अच्छा, मैं एक कायदा पेश करता हूँ जो मैंने मेरे उस्ताद साहब ने मुझे बताया।
1: ये पूरब का कौन सा घराना है?
0: फरखाबाद से ही है मेरे ख्याल से कायदा ही है। अब पूरब में जो जो भी घराने आते हैं उन्हीं में से कोई एक घराने का कायदा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ।

0: ये जो है मैं आपके सामने पेश किया जी।
1: बहुत अच्छा। रफीउद्दीन जी, आप देश के बहुत ही लोकप्रिय तबला वादक हैं, गाने के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ, सोलो सबके साथ आप बजाते हैं
0: जी।
1: किन किन लोगों के साथ बजाकर आपको अच्छा लगा?
0: जी, हमारे देश के सभी जो ऊंचे कलाकार हैं उनका जवाब ही नहीं, सभी अच्छे हैं। और हर तबला नवाज की दिली ख्वाहिश होती है कि मैं इनके साथ भी बजाऊं, उनके साथ भी बजाऊं, उनके साथ भी। तकरीबन ये है कि मैं अपने देश के जो हमारे मशहूर नामचीन फनकार हैं तो मैं तकरीबन सभी के साथ में, मैंने मुझे अवसर प्राप्त हुआ उनकी संगत करने का, और कुछ ना कुछ मुझे वहाँ सीखने को ही मिला कि अगर मैं गाने में संगत कर रहा हूँ तो मुझे किस किस्म की संगत करनी है और उनको किस किस्म की संगत चाहिए। ये एक बहुत बड़ी वैल्यूबल बात है जो कि हर एक तबला नवाज को, मैं समझता हूँ कि उसको ध्यान रखनी चाहिए। अपना तो सभी बजा लेते हैं और जवानी का जोश भी होता है, तो हम बुजुर्गों के साथ बजा रहे हैं तो हमें थोड़ा किन बातों को जरूरी है जानना कि उनको नागवार ना गुजरे। अगर वो कहते हैं तो हमें बजाना चाहिए, अदरवाइज हमें संगत ऐसी करनी चाहिए उनको नागवार ना गुजरे और वो दुआएं देंगे, तारीफ ही देंगे, इससे अच्छी।
1: हमारे देश में कई तबला वादक ऐसे हैं, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो कुछ हैं जो गाने की संगत के लिए मशहूर हैं
0: जी,
1: कुछ हैं जो स्वर वाद्य की संगत के लिए मशहूर हैं
0: जी,
1: कुछ हैं जो नृत्य की संगत के लिए मशहूर हैं
0: जी,
1: कुछ ही ऐसे हैं जो सबके साथ बजाते हैं
0: जी।
1: तो जब आप गाने के साथ बजाते हैं या स्वर वाद्य के साथ बजाते हैं तो क्या अंतर लाते हैं अपने तबले में? दोनों की संगत की शैली में क्या अंतर है, वादन शैली में क्या अंतर हो जाता है जब आप गाने के साथ बजाते हैं या इंस्ट्रूमेंट के साथ बजाते हैं?
0: एक्चुअल में गाने के साथ का क्या मसला है कि जब हम गाने के साथ बजा रहे हैं तो हमें फिर वहाँ बजाने का कोई हमारा तुक होता नहीं है। हम गाने जो गा रहे हैं उनकी हमें संगत करनी है, हम वहाँ सिर्फ संगत के लिए आए, अपना तबला बजाने के लिए।
1: और संगत तो आप इंस्ट्रूमेंट के साथ भी करते हैं।
0: हाँ, मगर अब जब इंस्ट्रूमेंट गाने से थोड़ा सा अलहदा हो जाता है तो उसमें क्या चीज हो गई है आज के दौर के लिहाज से, पहले से चला आ रहा है कि जब इंस्ट्रूमेंट बज रहा है तो उसमें कहीं कहीं तबला प्लेयर को चांस भी दिया जाता है
1: जी।
0: तो उसमें यह है कि जब इंस्ट्रूमेंट में क्या छंद बजा है तो या तो हम उस छंद को लेके चलेंगे या फिर हमारे जहन में यह है कि भाई ये टेम्पो चल रहा है इस ताल के अंदर, अगर वो हमें कहते हैं तो हमें क्या बजाना है तो हमें थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा, तो हम उसी हिसाब से। वो एक अच्छी बात भी है थोड़ा सा उसके अंदर हमारा जो एक सोलो, अगर हम जैसे कि तबला सोलो बहुत कभी से बजता है, थोड़ा सा वहाँ एक तरीके का चांस मिलते रहते हैं तो छोटी छोटी चीजें बजती रहती हैं, तो ये समझ लो एक तरीके से सोलो भी बजता रहता है वो और संगत भी होती रहती है।
1: आप कहना चाहते हैं कि गाने के साथ ज्यादातर ठेका बजता है
0: जी,
1: अपना कुछ बजाने का अवसर उसमें बहुत कम होता है।
0: हाँ, अगर वो चाहे तो, अगर वो कहीं मौका आप कह देते हैं कि भाई आप बजाइए तो वो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज तो गाने के साथ में संगत ऐसी ही होनी चाहिए कि उनको डिस्टर्ब ना हो और अच्छी तरीके से गा सके।
1: और इंस्ट्रूमेंट के साथ बजाते समय आपको अपनी चीज बजाने का मौका ज्यादा मिलता है?
0: अपनी चीजें बजाने का मौका मिलता है, मगर वहां भी हमें इस कायदे को ध्यान रखना है कि उनके साथ में हमें इतनी ही संगत करनी है कि उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो।
1: तो मैं फिर उसी सवाल पर आ जाता हूँ
0: जी
1: कि किन किन लोगों के साथ बजाकर आपको ज्यादा अच्छा लगा? क्योंकि पहले आपने जो जवाब दिया था वो बहुत डिप्लोमेटिक जवाब था। मैं चाहूंगा कुछ नाम आप लें
0: अच्छा,
1: जिनके साथ अच्छा लगा आपको बजाकर।
0: जी, एक्चुअल में क्या चीज है कि मैं वैसे तो मैं बचपन में उस्ताद अमजद अली खान साहब के साथ मैंने शुरू किया बजाना
1: जी,
0: और उन्होंने मुझे काफी हौसला अफजाई करी, मैं उनके साथ में बजाया। शुजात खान साहब है, उनके साथ भी बड़ा अच्छा अच्छा शो रहा। हमारे दिल्ली के, मतलब हमारे कश्मीर के पंडित भजन सोपुरी साहब, मैं उनके साथ बजाता हूँ, उनके बेटे के साथ मैं बजाता हूँ, बहुत अच्छा आइटम होता है, बड़ा अच्छा लगता है उनका बजाने का तरीका, संतूर का बहुत अच्छा है। और उसके अलावा ये है कि अपने शाहिद परवेज जी हैं, वैसे मैं पंडित जसराज जी की भी मैं संगत कर चुका हूँ, और भी ऐसे गाने के काफी बड़े नाम हैं जिन लोगों के साथ भी मैंने संगत की है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए।
1: आप विदेशों में भी बहुत अधिक लोकप्रिय हैं, लगातार आपकी विदेश यात्राएं चलती रहती हैं।
0: बराबर,
1: किन किन देशों में बजाकर आपको अच्छा लगा?
0: यात्राएं चलती रहती हैं, बस उसका क्रम है, आप लोगों की दुआएं हैं। बस ये देशों में ये है कि विदेश जाना बहुत अच्छा लगता है, और ज्यादातर मैं नीदरलैंड में रहा बजाने के लिए। उसके अलावा जर्मनी भी है, स्विट्जरलैंड भी है, स्वीडन भी है, डेनमार्क भी है, पेरिस भी है, पेरिस में भी मैं काफी बजाया, मगर मेरा हॉलैंड में ज्यादा बजाना रहा और पेरिस में बजाना रहा मेरा। वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है, और
1: क्यों
0: वहाँ
1: अच्छा लगता है? वहाँ पैसे अच्छे मिलते हैं या श्रोता बहुत अच्छे होते हैं?
0: एक्चुअल में क्या चीज है कि जाहिर सी बात है कि पैसे तो मिलते ही है, सब सभी जाते हैं वहाँ, पैसे सबको अच्छे मिलते हैं, और वहाँ गा बजा के भी बड़ा अच्छा लगता है, मगर जो चीज गाने बजाने की, जो हम हिंदुस्तान में अपने शहर में या अपने किसी हिंदुस्तान के किसी शहर में गाते बजाते हैं और हमने कोई चीज बजाई, बीच में से किसी ने वाह वाह करी, दाद दी, तो उसका मजा हमें यही मिलता है, क्योंकि वहाँ के कायदे कानून और नियम कुछ अलहदा किस्म के हैं। कायदे कानून में वो लोग बहुत अच्छे हैं, प्रोग्राम शुरू हो गया तो आखिर तक आप बैठ के सुने, जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा फिर चाहे वो कितनी भी तालियां बजाए, कितना भी आपका स्वागत करें, वो उनकी बहुत अच्छी बात है। कहीं कहीं वो हम इस चीज से जरा सा वो रह जाते हैं कि अगर हम हिंदुस्तान में होते तो अभी कोई बीच में से वाहवा करता, ये करता, समझदार लोग होते हैं, समझने वाले होते हैं तो जरा दिल लगता और कोशिश की जाती है उसमें अच्छे से अच्छा चीजों को प्रदर्शन करने के लिए।
1: और अब तो हमारे संगीत का वहाँ काफी प्रचार प्रसार भी हो रहा है, वो लोग
0: जी, इसमें कोई शक नहीं है कि शास्त्रीय संगीत वो लोग बहुत तेजी से सीख रहे हैं
1: जी,
0: ये समझ लें पूरी दुनिया के अंदर शास्त्रीय संगीत बहुत तेजी से फैल रहा है, वहाँ जितने भी वेस्टर्न लोग हैं वो सब लोग क्लासिकल संगीत सीख रहे हैं, जो क्लासिकल के जो भी सब्जेक्ट हैं सब वो सीख रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है और बड़ी खुशी की बात है।
1: काफी बातचीत हो चुकी है, तबला सुनने का मन हो रहा है, क्या सुनाएंगे आप?
0: मैं एक छोटा सा कायदा सुनाता हूँ
1: जी।
0: तो

0: छोटी सी चीज मैंने पेश करी है। इसमें बल बहुत सारे हैं मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ सब थोड़ी थोड़ी ही बच जाए तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा
1: संगीत इन दिनों एक फैशन भी बनता जा रहा है, तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं संगीत को लेकर, और उसमें पिछले कुछ वर्षों में एक नाम बहुत तेजी से आया है, फ्यूजन। आपने भी बजाया है?
0: जी मैंने कोशिश तो की है बजाने की।
1: क्या चीज है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये फ्यूजन जो है एक तरह का कन्फ्यूजन है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, आप क्या मानते हैं? चूंकि आपने बजाया है इसलिए आप हमारी शंका का समाधान कर पाएंगे।
0: देखिए जी, ऐसा है कि लोग तो कुछ ना कुछ कहते हैं, जितने लोग इतनी बातें किसी को रोक नहीं सकते। तो मसला यह है कि फ्यूजन हमारे यहाँ बड़ा तेजी से फैला है। फ्यूजन म्यूजिक एक अच्छा म्यूजिक है, मैं यही कहूंगा, खासकर जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री है और इस किस्म के जिसमें लाइट म्यूजिक टाइप की जो चीजें होती है तकरीबन फ्यूजन ही में आजकल यहाँ बैंड भी काफी बज रहे हैं।
1: उसमें होता क्या है?
0: अच्छा, उसमें एक म्यूजिक होता है, फ्यूजन को म्यूजिक के साथ में देख के उसको बजाना पड़ता है, वो भी एक अच्छी चीज होती है। एक्चुअल में क्या चीज है कि 1987 के अंदर एक न्यूज मैगजीन सीरियल आया करता था, द वर्ल्ड दिस वीक।
1: जी हाँ।
0: तो मुझे तो वहां से बजाने का इसमें अवसर
1: आपने उसमें हुआ। तबला बजाया है
0: उसमें? मैंने उसके अंदर तबला बजाया। तो उसमें एक्चुअल में क्या था कि उस्ताद शुजात खान साहब को वो सितार पे पीस बजाना था और मुझे तबला बजाना था, मगर सडनली क्या हुआ, जिस दिन रिकॉर्डिंग थी उनको जाना पड़ गया, कुछ जरूरी काम आ गया। तो फिर वो मिस्टर लॉय मैन जिन्होंने ये म्यूजिक बनाया है, तो उन्होंने बजाया, तो वो मुझसे बोले कि कोई अंग्रेज है, आपको उनके पास जाना है और वहां जाके इस म्यूजिक को बनाना है। खैर जब मैं वहां चला गया तो मैंने सारा दिन उनका म्यूजिक सुना।

0: म्यूजिक कंपोज करते रहे, मैं म्यूजिक सुनता रहा मैं, और वो कंपोज करते रहे। शाम को 4 बजे के करीब उन्होंने म्यूजिक बनाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि म्यूजिक तैयार हो गया है, अब आप इसको जरा सा देखें क्या इसमें बजाना है। तो मैंने बहुत सारी चीजों की कोशिश करी कि मैं ये बजाऊं। उसमें मेरी एक सोच ये थी कि तबले के कायदे कानून को रखे फ्यूजन भी बजाया जाए और तबले की जो रियलिटी जो है वो भी कायम रहे। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है, फ्यूजन हम बजाएंगे तो फिर उसी के हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा, वैसे ही रिदम होंगे, वैसी चीजें होंगी। तो कुदरत ने वो बनवा दिया उसको। जिस वक्त मैं बजा रहा था तो मिस्टर लॉय के मुंह से भी निकला कि ये चीज बहुत मैच कर रही है, ये बोल इसके अंदर काफी मैच कर रहा है, इसी को बजाया। तो मैंने उसको बजाया और उससे जो भी बोल थे उनको मिला के जब हमने बजाया तो वो अपने आप में कमाल चीज बैठी, जो कि हिंदुस्तान में क्या दुनिया में सराही गई। पहले भी शुरू था मगर लोगों का कहना यह है कि ये आप ही की देन है, इसका श्रेय तो आप ही को जाता है और ये आप ही ने शुरू किया। ये दोनों की मेल से इंडियन और अपना फ्यूजन को मिला करके जो म्यूजिक बनता है, वेस्टर्न, इंडियन और वेस्टर्न को मिला के जो म्यूजिक बनता है वो फ्यूजन बन जाता है और दोनों की ही उससे खूबसूरती और तरक्की पैदा हो जाती है।
1: मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो आपने उस समय बजाया था द वर्ड दिस वीक के लिए, उसके थोड़ा सा झलक दिखाएं।
0: मैं जरा सा बजा देता हूँ आप।

0: ये इस टाइप की कंपोजिशन थी जो उसके अंदर बजाई गई।
1: क्या बात है।
0: और वो सब लोगों ने बहुत सराहा, सबको पसंद आई।
1: जैसा आपने कहा कि इंडियन और वेस्टर्न, भारतीय और पाश्चात्य दोनों संगीत के मेल से जो पैदा होता है वो फ्यूजन है। ये मेल कैसे करते हैं? वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ का संगीत अलग है, वहाँ की सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। क्या देखते हैं कि वहाँ क्या है, यहाँ क्या है, कैसे आप लोग मिलाते हैं उसको?
0: एक्चुअल में क्या चीज है, अगर हम उन लोगों के साथ में बजा रहे हैं तो हमें उन्हीं के म्यूजिक के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा और उन्हीं के साथ में मिलके उन्हीं चीजों को, क्या उसमें पैटर्न बच सकते हैं, क्या उसमें रिदम बच सकता है, तो हम उसी को, उनके म्यूजिक को समझ के अपनी ताल वगैरह जो भी हम सेट करते हैं बजाते हैं। अगर उसमें कहीं ऐसा मौका भी हो, कहीं जगह मिलती है, तो हम सोलो भी बजा देते हैं उसमें, अपनी सभ्यता को भी कायम रखते हैं उसके अंदर, तबले का जो रियलिटी उसको भी कायम रखते हैं। ये एक अच्छा मौका होता है, अदरवाइज नहीं तो फिर उसमें पैटर्न और रिदम ऐसी चीज सोचनी पड़ती है जिससे उनके म्यूजिक के साथ में मैच हो जाए। और लोग फिर यही होता है कि भाई वाह बहुत अच्छे, क्या अच्छे, नॉर्थ इंडियन तबला जो है और उसका कोई मेल नहीं था, मगर आप लोगों ने इतना अच्छे तरीके से बजाया कि वो बहुत ही खूबसूरत लगा। ये कोशिश होती है उसके अंदर।
1: आपने और किन किन कलाकारों के साथ किया है फ्यूजन का प्रयोग?
0: अच्छा, फ्यूजन में तो ये है कि जैसे भाई मैंडोंसा साहब के साथ में मैंने काफी बजाया, और उसके अलावा मिस्टर फर्नांडो लामेरिनस हैं,
1: अच्छा,
0: नेदरलैंड में रहते हैं, मैंने उनके साथ में बजाया। एक ब्लफ बैंड है, मैं उनके साथ में बजाया। एक जंगल वॉरियर बैंड है, नेदरलैंड में है वो भी, मैं उनके साथ में भी बजाया। और उसके अलावा कहीं कहीं जैसे कि ऐसी भी जगह है कि हमें आपका तबला चाहिए, कुछ फ्यूजन म्यूजिक है हमारा, आप उसमें बजा दीजिए, तो मैं इसमें कोशिश। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के एक बड़े मशहूर सिंगर है रेमो फर्नांडिस, मैंने उनके साथ भी बजाया।
1: अच्छा,
0: उनके एल्बम भी मैंने बजाया, वो बड़ा मशहूर बियॉन्ड इंडिया करके वो एल्बम का नाम है, तो उसके अंदर भी मैंने बजाया। अब अगर अवसर मिलता रहेगा तो मैं कोशिश करता रहूंगा कुछ अच्छी अच्छी चीजें उसमें बजाई जा सके जो लोग सुन सके। और
1: अच्छा, इतना फ्यूजन करने के बाद आपको कहीं लगता है आपके जो शास्त्रीय संगीत के जो शास्त्रीयता है, इसकी जो मौलिकता है, कहीं उसका प्रभाव इस पे भी आ रहा है, कुछ बदल रहा है?
0: जी नहीं, उस पर तो कोई असर पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो बुजुर्गों की पुरानी ऐसी चीजें हैं, जैसी हमेशा से आ रही हैं वैसी ही रहेंगी, उसमें कोई वो नहीं होगा। बल्कि उसी की बदौलत हम दूसरी चीजों को का बजा रहे हैं, उसमें इतनी क्या कहना चाहिए क्षमता है, इतनी ताकत है कि उस संगीत को हमने जो सीखा है कि उसको गाने बजाने के बाद में हम दुनिया के किसी भी संगीत को गा बजा सकते हैं आसानी से उसकी बदौलत। ये एक बड़ी पावर की बात है, वो होगा उसी के जरिए से, ये एक बात है। मगर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम ज्यादा उस संगीत के अंदर घुसरे तो अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को, अपने संगीत को भूल रहे, नहीं, हमें सबसे पहले तो उसे ही याद करना है, उसी की बदौलत हम वो भी गा बजा रहे हैं।
1: ये वैसे ही होता है जैसे हम पूरी दुनिया में घूमते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ का खाना खाते हैं, वहाँ का पानी पीते हैं, और फिर जब अपने देश में लौट कर आते हैं तो फिर उसे दाल रोटी पर आ जाते हैं और वो हमें अच्छा लगता है,
0: और इसमें कोई शक की बात ही नहीं, बहुत अच्छी बात करें आप।
1: क्या बात है
0: जी।
1: इस समय आप क्या सुनाना चाहेंगे? आप
0: इस समय मैं एक छोटा सा रेला सुना देता हूँ कुछ।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना, वो तो चल ही

0: क्या बात है, बहुत अच्छा।
1: ये छोटा सा पीस मैंने बजाया।
2: एक आध कायदा भी सुनते हैं?
1: मैं कायदा सुना देता हूँ
2: जी,
1: जो अजाड़े घराने में काफी बजा है
2: जी,
1: उस्ताद महबूबुद्दीन खासाब ने बजाया, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको बजाने की।

0: दर्शक को इसको पेश करता हूँ।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो ये कोशिश करिए साहब मैं इसको बजाने की, जो भी मामला है ये मैं वही बता रहा हूँ आपके सामने, ये दिल्ली का बोल है। होता है
1: जी,
0: यहाँ से ये इसके अंदर चेंजेस जो बुजुर्गों ने किए हैं,
1: लाई बदल दिया आपने, आड़ी कर दिया,
0: आड़ी आ गई है
1: जी जी,
0: जो जिसके लिए मशहूर है अजराड़ा घराना।
1: और लखनऊ,
0: लखनऊ घराने के जो बोल बजे हैं वो सब एक्चुअल में बोल तो सबसे वही है।
1: हाँ।
0: उसमें टेक्निक्स नहीं है बजाने की,
1: वहाँ चूंकि डांस का प्रभाव ज्यादा था, कथक नृत्य का प्रभाव
0: था, रहा है वहाँ
1: जी।
0: जैसा कि अब लखनऊ घराना उस्ताद मोदू खान साहब, उस्ताद बख्शू खान साहब ने इसको ईजाद किया, हालांकि वो दिल्ली के जो उस्ताद थे अपने खान साहब उन्हीं के शागिर्द थे
1: जी।
0: उन्होंने वहां से सीखा, वहां से सीखा बाद में वो लखनऊ चले गए, वहां उन्होंने उसको अपने अंदाज से ढाला और जब उन्होंने बजाया तो उनके नाम से वो लखनऊ से मुंसलिक हो गया।
1: तो कोई बोल हो जाए लखनऊ का।
0: अच्छा मैं देखता हूँ साहब।

0: रफीउद्दीन जी, गतें हर घराने की धरोहर मानी जाती हैं
1: जी,
0: और आपने अभी तक हमें पेशकार भी सुनाया, कायदा भी सुनाया, रेदा भी सुनाया, गतें आपने नहीं सुनाई, कुछ गतें भी हो जाएं।
1: ठीक है साहब, मैं कोशिश करता हूँ
0: जी
1: कि मैं गतें भी एक दो आपके सामने पेश करूँ।

0: यूं तो हर कलाकार का हर कार्यक्रम उसके लिए यादगार होता है, लेकिन कुछ कार्यक्रम उसके ऐसे होते हैं जो उसके लिए विशेष यादगार होते हैं, जिन्हें वो जिंदगी भर नहीं भूल पाता। आपके जीवन में भी ऐसे क्षण, ऐसे कार्यक्रम जरूर आए होंगे, उनमें से एक दो घटनाओं से आप हमारे श्रोताओं को भी परिचित कराएं।
1: जी, आपने बोला तो मैं देखिए एक वाकया आपके सामने पेश करता हूँ। नीदरलैंड मेरा काफी जाना रहा, तो अभी मैं 65,000 लोगों के सामने भी बजाया था। वहाँ शहर है तो उसमें पिंक पॉप करके एक फेस्टिवल होता है, वो 3 दिन से चल रहा था, वेस्टर्न म्यूजिक का फेस्टिवल जो होता है। उसमें अमेरिका से दुनिया भर के बैंड आए हुए थे, तो मैं जिस बैंड के लिए बजाता हूँ मैं उनके साथ में बजाया। तो 65,000 लोग देख के तो मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि 10-1 के सामने तो मैं भी बजा चुका हूँ, 10-12 के सामने। दस बारह हजार लोग जो हैं गणेश फेस्टिवल में उस्ताद अमजद अली खान साहब के साथ 1994 में बजाया था, उसमें 10,000 लोग थे। तो मैंने जब देखा तो वो बहुत तादाद थी एक, तो उसमें अब जैसे मैं 65,000 लोग जो मैंने देखे तो मैं हैरानी हो गया, मगर मुझे बेइंतहा खुशी भी हुई। हालांकि जो बैंड है वहाँ इंटरव्यू भी हुआ उसके अंदर, वो सब कहने लगे कि आपको कैसा लग रहा है, तो वो बैंड के लोग डरे हुए थे कि हमें तो बहुत डर लग रहा है, इतने लोग हमने देखे नहीं है। 10-12 के हम एक ये शो हम पहले कर चुके थे 10-12 हजार लोगों के लिए, तो आहुई एक स्टेडियम है वहां पर, तो जब 65,000 लोग देखे तो मैं भी हो गया। तो उन्होंने मुझसे भी पूछा भाई, मैंने कहा ये है कि 65,000 लोगों को देख के थोड़ा सा एक घबराहट सी महसूस होती है, मगर अच्छा भी बहुत लग रहा है कि कम से कम इतने लोगों के सामने बजाएंगे। तो बड़ा हिम्मत से और बहादुरी से मैंने कोशिश करके उसमें बजाया और बड़ा अच्छा लगा। तो इससे पहले वाकया ये है कि जिस वक्त मैं नीदरलैंड जाके उतरा एयरपोर्ट पर, तो जो कस्टम ऑफिसर होते हैं ना, उन लोगों ने मेरा सामान वगैरह सब चेकिंग शुरू कर दी। नया काला शीशम निकला था, नए 2 तबले लेकर गया था।
0: अच्छा,
1: बहुत अच्छे किस्म के तबले थे वो, शायद जैसे लकड़ी गीली रहती है ना अंदर, और जब एक्सरे मशीन में डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ रखा हुआ है। वो बार बार मशीन में डालें और वो ये जताएं कि इसमें कुछ है, इसको खोलना पड़ेगा। मैंने उनको बोला साहब इसमें कुछ नहीं है, अगर आप इसको खोलेंगे तो मेरा यहाँ ना बेकार है, मैं इसी की वजह से यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो वो मान नहीं रहे साहब। फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए आप इसको खोल रहे हैं तो कोई एक बनाने वाला बुला लें आप, मैं आपको कहता हूँ कि आप इसको खोल के चेक कर लीजिए, मगर मुझे ऐसा ही तबला चाहिए, बाद में आप इसको इसी तरीके से रिपेयर करके दें। वो इस बात के लिए नहीं मानने, वो उन्होंने यहाँ तक नौबत आ गई कि हम पूड़ा वगैरह फाड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, मतलब हम चेक करेंगे इसको। तो ये अजीब सी बात है कि जिस वक्त वो तबले की तरफ वो बढ़ रहे थे और अपना कार्रवाई करने वाले थे, तो एक साहब आ गए सामने से, वो भी कस्टम ऑफिसर थे। उन्होंने आके पूछा, कहने लगे क्या हो रहा है, कह जी ऐसे हम चेक कर रहे हैं। कहने रुको, उन्होंने कहा कौन है वो, बुलाओ। उन्होंने बुलाया तो मैं खड़ा हुआ था। तो वो आप यकीन मानिए कि मैं भी हैरान हो गया इस बात को देख के, उन्होंने मेरा चेहरा देखा और कहने लगे कि तुम मिस्टर साबरी। अरे मैंने कहा भाई आप कैसे मुझे जानते हैं। अरे कह लेंगे साहब मैंने आपके शो सुने हैं नीदरलैंड के अंदर, और जो फर्नांडो लमेरिनस जो आर्टिस्ट है उनके 40 साल मनाए जा रहे थे, उन्होंने स्पेशली मुझे बुलाया था वहाँ, तो मैं उसमें बजाया था। तो करई करके वो ऑडिटोरियम का नाम है, और उसमें 2,000 के करीब

0: 1500 से 2000 लोग उसके अंदर आते हैं। तो वो कहने लगे मैं वहां था और मैंने सुना था। मैंने कहा आपने तो इस वक्त कमाल ही कर दिया, मुझे पहचान की, क्योंकि मेरे जो तबले पे परेशानी आई हुई। मैंने कहा अब इसको जरा था आप रुकें। तो उन्होंने कहा कि इनको छेड़ना मत, मैं इन्हें जानता हूं, ये तबला बजाने के लिए आए हैं और जो ब्लफ बैंड है उसके साथ में बजाते हैं, इनको लेके जाइए और चाय लाइए, हम सब साथ मिलके पिएंगे। तो ये वाकया मेरे साथ में हुआ कि मैं बेइंतहा खुश भी हुआ, खुदा का मैंने शुक्र अदा किया। और दूसरे जब मैंने उन लोगों को सुनाया तो वो लोग भी हैरान हो गए जिनके पास में जाता,
1: कहले बहुत अच्छा, बहुत
0: तो लोग जानने लगे ये मसला उसके अंदर एक इंग्लिश कंट्री के अंदर। तो ये एक वाकया मेरे साथ में ऐसा रहा।
1: आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। आप एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे गुरु भी हैं, आपके कई शागिर्द बजा रहे हैं देश विदेश में।
0: जी जी जी,
1: बहुत सारे लोग आपका अनुकरण कर रहे हैं, आपको सुन सुन के भी उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके गुरुओं को। इस इंटरव्यू के माध्यम से अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आपका स्वागत है।
0: मुझे मालूम नहीं कि मैं अच्छा बजा रहा हूँ या गलत बजा रहा हूँ या सही बजा रहा हूँ। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको सही करने की जो मैंने बुजुर्गों से सीखा है, और मेरी यही कोशिश है कि मैं उसको सही तरीके से पेश कर दूं। अगर कुछ कमियां अभी भी रह गई हैं तो मैं चाहूंगा कि उसको आगे उन कमियों को दूर किया जाए और उनको सही तरीके से पेश किया जाए। बस कहना मैं ये चाहूंगा कि जो लोग भी हैं गाने बजाने की फील्ड के अंदर, जो लड़के सीख रहे हैं, चाहे वो स्कूलों में सीख रहे हैं या किसी उस्ताद साहब के पास जाके पर्सनली सीख रहे हैं, वो इस काम को बहुत लगन और शौक से इसको सीखें, उस्ताद की खिदमत करें, एक परंपरा के तरीके से सीखें, गुरु शिष्य परंपरा उसको अपनाएं और उसको उस नजरिए से सीखें। तो इंशाल्लाह गुरु की आप सेवा करेंगे, खिदमत करेंगे, तो आपको जरूर इसका फल मिलेगा, इसमें तरक्की मिलेगी और उस भगवान को और अल्लाह को भी याद रखें आप। यह मेरा कहना सबसे।
1: कई बार ऐसा होता है कि शागिर्द किसी गुरु से सीखना शुरू करता है, कुछ दिन सीखता है और उसके बाद किसी नामी गुरु के पास चला जाता है।
0: काफी बार हुआ, ऐसा हुआ है,
1: अक्सर हो जाता
0: जी,
1: है
0: जी, इस किस्म की बातें रहती हैं। मगर मैं समझता हूँ कि हमें पहले ही चुनाव अच्छे गुरु का कर लेना चाहिए, जो हमें पता चल जाए कि ये बहुत अच्छे गुरु हैं, जिस चीज की हमें जरूरत रहेगी हमें बतला सकते हैं। तो हम पहले ही अच्छे गुरु को तलाश कर लें, अपने निगाहों से किसी भी तरीके से पूछ के जानकारी लेके तो वहां जाएं, और ऐसा ना करें क्योंकि ये जरा बड़ी अच्छी सी बात नहीं होती है। अगर आप इनसे सीख रहे हैं और अचानक उनको छोड़ के उनके पास चले जाएं तो उनको बहुत तकलीफ होती है, वो बुरा मानते हैं। और वो वैसे ये भी कहा गया है कि उस्तादों की, गुरुओं की दुआएं लेनी चाहिए, बद्दुआएं नहीं, क्योंकि अगर गुरु दिल से बद्दुआ कर देता है तो चेला कितना भी गुणी हो, कुछ भी हो, वो कामयाब नहीं होता, बस वो अपनी जेब में रख के उस सामान को अपने फिरता रहता है।
1: आपने कहा अच्छे गुरु की, अच्छे गुरु का क्या अर्थ है? जो बहुत अच्छा सिखा सकता है, जिसके पास ज्ञान है, या जो बहुत बड़ा परफॉर्मर है जिसका नाम है, अच्छा गुरु आप किसे मानते हैं?
0: एक्चुअल में गुरुओं की भी दो उपाधियां रही हैं, एक सिखायक हुए हैं और एक बजायक हुए हैं। जो सिखायक हुए हैं वो भी कम नहीं होते, उन्होंने ऐसे ऐसे शागिर्द अपने बनाए, चाहे वो अपने किसी शागिर्द से उनको बुरा लगा कोई चीज तो उन्होंने उसको दिखाने के लिए दूसरा शागिर्द तैयार कर दिया। तो सिखायक लोग जो होते हैं वो कम नहीं होते,
1: बिल्कुल।
0: मगर गुरु अगर आपके बजायक हैं तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत आसानी है, वो सिखाएंगे और आपको जो बजा के बतलाएंगे उससे बेहतर बात है नहीं, जो आपके लिए बहुत ही जल्दी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा।
1: कई बार ऐसा भी होता है बहुत अच्छा बजाने वाले बहुत अच्छा सिखायक नहीं होते हैं, तो अच्छी तरह सिखा नहीं पाते हैं, कई ऐसे कलाकार हैं।
0: बिल्कुल, ये भी बात बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही है कि बजाना अलहदा चीज है, सिखाना अलहदा चीज है। तो ये इस किस्म से बहुत कमी से ऐसा रहा है, मगर तकरीबन जिसने गुरुओं से उस्तादों से तालीम ली है और वो बजा रहे हैं तो वो अच्छे गुरु भी रहे और सिखाया भी अच्छा उन्होंने।
1: कार्यक्रम के समापन के पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर आप रूपक में अपना तबला वादन प्रस्तुत करें।
0: जी मैं कोशिश करता हूँ।

0: आप आए हमारे स्टूडियो में, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं आकाशवाणी की तरफ से आपको, आपके साथी कलाकार श्री सज्जाद अहमद खान और श्री सपन विश्वास को धन्यवाद देता हूं।
1: मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां आए और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और बड़े अच्छे क्वेश्चन आपने किए, हमने कोशिश करी उसको रिप्लाई करने की, तो ये एक बहुत अच्छा वक्त आपके साथ में गुजरा।
0: शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप उस्ताद रफीउद्दीन साबरी से विजय शंकर मिश्र की भेंटवार्ता सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
3: यू वर लिसनिंग टू एन इंटरव्यू विद उस्ताद रफीउद्दीन साबरी। टॉकिंग टू हिम वॉज विजय शंकर मिश्रा। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH in Classical Music Channel।
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं सुंदरी वादन, कलाकार है यशवंत आधो। आपने सुंदरी पर प्रस्तुत किया राग हंसध्वनि सुनते हैं। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है शंकर कुंभार और ये सुनते हैं सुंदरी पर राग हंसध्वनि, कलाकार यशवंत जाधव।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुंदर राग हंसध्वनि। आपके साथ तबले पर थे शंकर कुंभार। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सुंदरी पर राग मदमात सारंग, कलाकार यशवंत जाधव। विलंबित ग एक ताल में निबद्ध है और द्रुत ग तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है शंकर कुंभार। तो आइए सुनते हैं सुंदरी पर राग मदमात सारंग, कलाकार यशवंत जाधव।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुंदरी पर राग मदमात सारंग। कलाकार थे यशवंत जाधव। आपके साथ तबले पर थे शंकर कुंभार। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग भाटियार में ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित संदीपन समाजपति। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। तो लीजिए प्रस्तुत है राग भाटियार में ख्याल गायन, कलाकार पंडित संदीपन समाजपति।
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट आ हिंदुस्तानी फोकल रेंडिशन। लिसन टू अ ख्याल इन राग भाटियार। आवर आर्टिस्ट दिस मॉर्निंग पंडित संदीपन समाजपति, accompanying on the tabla Pandit Sujit Saha, and on the harmonium Rathindranath Chakraborty. Now listen to a khayal in Raag Bhatiyar by your artist Pandit Sandipan Samajpati.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भाटियार में ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित संदीपन समाजपति। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग जौनपुरी में सितार वादन। आज के कलाकार हैं अंजन साहा। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग जौनपुरी में सितार वादन, कलाकार अंजन साहा।
1: यू आर लिसनिंग टू अ ख्याल इन राग भटियार बाय आवर आर्टिस्ट पंडित संदीपन समाजपति, एकम्पानिंग ऑन द तबला पंडित सुजीत साहा एंड ऑन द हारमोनियम रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनीटाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी नाउ प्रेजेंट अ सितार रिसाइटल इन राग जौनपुरी। आवर नेक्स्ट आर्टिस्ट अंजन साहा, एकम्पानिंग ऑन द तबला तरुण रॉय। नाउ लिसन टू अ सितार रिसाइटल इन राग जौनपुरी बाय आवर आर्टिस्ट अंजन साहा।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जौनपुरी में सितार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे अंजन साहा। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन राग जौनपुरी by our artist Anjan Saha, accompanying on the tabla, Tarun Roy. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 anytime Indian music.

0: भारतीय संगीत सभा में श्रोताओं का स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन। श्रीमती बालामणि ईश्वर कर्नाटक संगीतज्ञ मुसरी सुब्रमण्य अय्यर के परिवार से जुड़ी हुई हैं। आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता श्रीमती सुशीला रामस्वामी से प्राप्त की। आगे आपने त्रिशूर के श्री राम वर्मा संगीत विद्यालय से उच्च प्रशिक्षण ग्रहण किया। आप 1992 से आकाशवाणी मदुरई में संगीत कलाकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। संगीत यात्रा के अनेक पड़ावों को पार करते हुए आज आप ए ग्रेड की कलाकार हैं। श्रीमती बालामणि ईश्वर ने संगीतज्ञ त्रिचि श्री एस गणेशन से उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा अपनी कला की तकनीक एवं कौशल का गहन ज्ञान प्राप्त किया। आपने तमिलनाडु और केरल में अनेक संगीत सभाओं में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं तथा संगीत प्रेमियों की अपार प्रशंसा प्राप्त की है। श्रीमती बालामणि ईश्वर त्रिचि एस गणेशन की कर्नाटक संगीत शैली में राग आलापना के लिए सुप्रसिद्ध हैं। पिछले 3 दशकों से सक्रिय रूप से गायन प्रस्तुत करती आ रही श्रीमती बालामणि ईश्वर अनेक पुरस्कारों एवं उपाधियों से अलंकृत हैं।
1: नमस्कार, दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा। इन टुनाइट्स प्रोग्राम यू कैन लिसन टू अ वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। श्रीमती बालामणि ईश्वर hails from the lineage of renowned vocalist Musiri Subramanya Iyer. Initially, she learnt music from her mother, Srimati Sushila Ramaswamy. Further tutelage was from renowned musician Trichy Sri S. Ganesan. After completing Music Senior Certificate course from Thrissur Sri Rama Varma Music School, Srimati Balamani joined Akashwani Madurai in the year 1992. Acclaimed for her Raga Alapana style.

0: rendition, she has travelled extensively for performances. Srimati Balamani Ishwar is an A-grade artist of Akashvani and is the recipient of several awards and accolades.
1: आज के कार्यक्रम में श्रीमती बालामणि ईश्वर के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती परूर एमके अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का शुभारंभ संत त्यागराज की रचना ब्रोव बारमा से कर रही हैं। राग बहुदारी पर आधारित ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
0: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट श्रीमती बालामणि ईश्वर इज अकम्पनीड बाय श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। द कॉन्सर्ट बिगिन्स विद ब्रोव बारमा composed by Saint Tyagaraja in Rag Bahudari set to Adi Taal.

0: अब आप सुनेंगे मुथुस्वामी दीक्षितर की रचना शेषाचल नायकम, वराली राग और रूपक ताल में।
1: लिसन नाउ टू शेषाचल नायकम कंपोज्ड बाय मुथुस्वामी दीक्षितर इन राग वराली सेट टू ताल रूपकम।

रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती परूर एमके अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। लीजिए अब प्रस्तुत है करहर प्रिया राग और मिश्र चापताल में संत त्यागराज की रचना पक्कल निलपड़ी। इंद रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। शी इज अकॉम्पनीड बाय परूर श्रीमती एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। लिसन नाउ टू पक्कल निलपटी, कंपोज्ड बाय सेंट त्यागराजा इन रा करहर प्रिया सेट टू मिश्र चापुताल।

0: रचना के अंत में आपने सुना तनि आवर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का समापन करते हुए प्रस्तुत कर रही हैं रचना मनदिर कुहंदद। सिंधु भैरवी राग और आदि ताल में रचना है तंजावूर शंकर अय्यर की।
1: दैट वाज अ तनि आवर्तनम परफॉर्म बाय Shri B. Ganapati Raman on the Mrudangam and Udupi Shri S. Srikant on the Kanjira. Srimati Balamani Ishwar concludes the concert with Manadir Kugandad, composed by Tanjavur Shankara Iyer in Rag Sindhu Bhairavi, set to Tal Adi.

रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में आज आप सुन रहे थे श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजिरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मदुरई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। इन द रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा यू जस्ट हर्ड द वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। शी वॉज अकॉम्पनीड बाय परूर श्री एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। Recorded in the studios of Akashvani Madurai, this broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार है विदुषी जरीन शर्मा। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे विदुषी जरीन शर्मा से राग जोग में आलाप जोड़ और छाला, तत्पश्चात विलंबित और द्रुतगत। विलंबित गत झपताल में और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा, यू विल लिसन द राग जोग।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थी विदुषी जरीन शर्मा। संगत कलाकार थे तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एंड एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज प्रस्तुत है तबला एकल वादन. वादक कलाकार है मुन्ने खां. सबसे पहले आप तीन ताल प्रस्तुत करेंगे.

अभी आप सुन रहे थे मुन्ने खां का बजाया तबले पर तीन ताल। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया तबले पर एक ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं जयशंकर।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे मुन्ने खां का बजाया तबले पर एक ताल। आइए अब सुनते हैं उस्ताद अली अकबर खां का बजाया सरोद पर राग चंद्र नंद। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं चतुर लाल। सबसे पहले आप आलाप जोड़ झाला प्रस्तुत करेंगे, तत्पश्चात विलंबित बंदिश जो कि तीन ताल में प्रस्तुत करेंगे।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली अकबर खां का बजाया सरोद पर राग चंद्र नंद। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद सईद जफर खां का सितार पर बजाया राग श्याम कल्याण में आलाप जोड़ और झाला. विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ सितार रिसाइटल बाय उस्ताद सईद जफर खां. ही फर्स्ट प्रेजेंट्स राग श्याम कल्याण in which you will listen to Alap, Jod and Jhala. The Vilambit and Drut Gat is set to Teen Taal. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak.

0: अभी आप उस्ताद सईद जफर खां का सितार पर बजाया राग श्याम कल्याण सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग जय जय वंती। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने।
1: यू आर लिसनिंग टू राग श्याम कल्याण ऑन द सितार बाय उस्ताद सईद जफर खां। ही नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग जय जय वंती। यू विल हियर द आलाप एंड गत सेट टू अद्धा चौताल। ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक।

0: अभी आप उस्ताद सईद जफर खां का सितार पर बजाया राग जयजयवंती सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद दैट रेंडिशन ऑफ राग जयजयवंती ऑन द सितार बाय उस्ताद सईद जफर खां, वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक विच फीचर्ड अ सितार रिसाइटल बाय उस्ताद सईद जफर खां। दिस प्रोग्राम was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का DTH चैनल रागम. आइए सुने भक्ति संगीत. हर रूप में छिपे हैं. आइए अब सुने RP शुक्ला की रचना विवेक प्रकाश की आवाज में.